0: मैना कबूतर
1: नहीं रे बालानो छोकरा तुम जानता है बोलो कुमड़ी का पिल्लू।

0: करेगी।
1: सवा इसके नाम से मेरा नहीं काम ये आग का न पानी का रोग ये जवानी का जिसे लग जाता है उसे लग जाता है।

काटाल जेन कंकर कहानी है, झूठ का फसाना है, कैसा ये जमाना है, बिच्छू का बहाना।

पहला पंचर वो देखिए, अरे पहला पंचर वो देखिए, बात सुनाऊं बड़ी कमाल। घर से देखो पढ़ने आए, घर से देखो पढ़ने आए माँ बाप के प्यारे लाल। भाषाओं के झगड़े में और आपस के इस रगड़े में झंडे लेकर डंडे लेकर झंडे लेकर डंडे ले

0: संध्या, ओळख रागांची मैफल गीतांची, बहारदार शैलीत वेगवेगळ्या रागांवर आधारित सुमधुर संगीताचा आनंद घेऊया आमच्या स्वर संध्या या कार्यक्रमातन. सादरकर्त्या राधिका जोशी. ऐका दर गुरुवारी संध्याकाळी 4 वाजता फक्त रेडिओ विश्वासवर.
1: नहीं हो सकता. बोलो ये झूठ है.
2: काश मैं इसे झूठ कह सकता दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है.
1: नहीं.
3: बास चीजें इंसान के बस में नहीं होती बेटा, भगवान के हाथ में होती है.

बड़ी डिफी बड़ी डिफी कल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है तकीला नकीला हबहूबा लबालूबा दुम तक दुम तक